0: थियोलॉजी तेरे से मांगी है, तेरा शरीर का दा पवित्र है, तेरे शरीर की संगत करके तो भी गंदगी बन जाते। असि पढ़ते नहीं तन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजा पाया फिरता होवा पाक पवित्र पापी सौ तन कटिया थुका पईया पित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम है रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाई। किन्ना कुछ शरीर पवित्र है, कह लगे कर्पूर पोप सुगंधा परस मनुख है देह मलिनत मचा रुदर दुर्गंधा नानक अत कर देन अज्ञानो। जे तू अंदर नु पाठ करना है कर्म कांड पाठ नहीं करनी, पता तेरे अंदर नु पवित्र किन्ने करना, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है के भरिय मत पापा का संग वो धोपे नामा के रंग, वो एक वस्त है जिन्हों बाणी विच हजूर ने कहा है कह लगे वो नाम है जरा तेरे अंदर की मैल धोवे। तो जे आप बाहर के कर्म कांड किते अंदर वाले दिल वाल झाकी ना मारी प्यारो अपने जोतना चकी से दूजिया किते देखा है वो सर्व व्यापक सुभा साढ़े तां बन गए ने, एक तां पूर्वलियां जूना दूजे साडे हुण जिथे जिथे असीं बहिने जिहड़ी सुरत साडे विच आउंदी है उहो जिहा साडा जीवन बन जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा परमात्मा सारियां विच है, प्रमाण मैं भी तेरियां दा सारियां विच, मैं तां इक्को बेनती करांगा जिहड़ा सारियां विचों मैनूं मेरे विच दिसण लग पवे, है सारियां विच पर जे मैनूं अपने विच दिसेगा मैं सारियां विच देख सकांगा। अज इन्नियां कु बेनतियां सिर प्रवान करियो, धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा नूं मेहर करे ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਹਿਨ ਹੋਜੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
1: ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ।

गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: पांच बारी है उस वेले तकी खाने कड़पे होने क्या कहन लगे हां अगे तारा सिंह वहां पान बंड रही अगे होके लै जे सूरमा वो बंड रही पान अगे होके लै जे तू एडा सूरमा ए इतिहास है तुहाडा उस वेले जंग लड़िया गया कुछ एक सिख शीर होए इत्थे भाई बघेल सिंह भाई माछी सिंह भाई गुरबख्श सिंह भाई जोत सिंह भाई बादल सिंह इत्यादिक करीब 40 कुछ सिखां ने नेड़े इत्थे शहादत हुंदी है उन्हां दे विच भाई तारा सिंह वां भी शहीद हुंदा है इह घटना 9 जून 1726 दी है इस तों अगली इतिहास दी लड़ी आपां कल रोज विचारांगे मेरे मन दी भावना है पूरे 100 साल का इतिहास तुहाडे नाल मैं सांझा करना है ताकि असी इतिहास नूं प्रोपरली मान सकीए भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह
1: सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ।

0: जहां खले कलगी तर तेर और प्रमोद तर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फते पा लई जिथे कलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेगुतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नूं मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुखोब इन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लंबी उम्र होवे तेरी और तू बड़े सोहने समय ते बड़ा चंगा मौका सी जदों तू आके सानू मिलिया है।
0: सैदा बेग समझ तू बेग आहो कंधारी बंद तेग।
1: महाराज कहन लगे सैदा बेग तू बेग तो भाव छेती इस गल नूं समझ लै हुण याद कर लै बीतिया समा अपना उन्हां जन्मां दे विच तू कंधारी सैं ते तेग बंधा हुंदा सी सोहनी तेग चंगा लोहा लिया के कुटना मुठे बनाउणे सोहणे शस्त्र बंधा हुंदा।
0: पूरब गुरु नानक तुम मिले सेवा करी होती तब भले।
1: जदों असीं पहलां गुरु नानक देव जी दे जामे दे विच सां

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी. मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला. इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है. महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया. शाम दो घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे. रात नूं जाके घेरा पा लिया. गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसे नूं तंग नहीं करना. महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्ह लिआंदा रस्सियां नाल. उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है. आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच. आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं. प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहेब जी. चौपाई तुरक सुबत जैसे जिस भाए जाए अचानक घेरो पाए.
1: सहज स्वभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है. मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा. इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है. अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया.
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो.
1: क्योंकि हो सकता है प्रभु जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया. हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे. ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है. कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है. सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उस नूं पकड़ लिया.
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सब नूं सुनायो.
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया. पिंड वालियां नूं इकट्ठा करके सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया भई असीं इहनूं ऐवें नहीं लैके जा रहे. इहने आ कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल विदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल विदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कवका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नामिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जिहड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: महाराज ने कहते यह कहेजे सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ये को खो लिया है इन्नी कादी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते दिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघा नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे हां पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताकर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह तुहाडे जिहड़े सिंघ ने इह अपनी ही मनमर्जियां करदे ऐ
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंगन छीने उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव किया उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खो लिया कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलेंद्र बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग दे सरवण कर रहे हाँ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं देखना कि सिंह किन्ने क सुचेत होए ने अगे नालों ऐसिया साखियां सरवण कीतिया सोहनिया पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है बहुत दुखी होके भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहिए मिलकर बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने आओ सतकार नाल इतिहास श्रवण करिए रसना करिए पवित्र गज के आखो सा

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौ पई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघा नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होई जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एक ही बार सारे सिंह हटे भाव पिछे, दोबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچھا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता है कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खन जोगी लंग भोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा इह अखर विच किन्नी डूंघाई है। जिहड़ा खन जोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंग भोग भाव। खालसा दो चीजां हो गईयां, एक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना उह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खन जोगी, तो जोगी हो गया लंग भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तां इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपड़ तो भाव, ये संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना, मेल करना। इस तरीके

0: सकल कला समरथ परवीन।
1: पीछे तो बाद विच अरदास तो बाद विच सिंघां ने बेनती की हे सर्ब कला दे ज्ञाता।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमें सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सीदे कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आवे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना किन्ना ज्ञान है। कई प्रश्न करे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आख।

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जेड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार के जेड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारयां नूं बुला के लियाओ इन्हां कोलों अज कुछ प्रश्न पुछने ने
1: सभियन को हकार लियाओ जय जय दीता सिदाओ
0: इन्हां सारयां नूं लै के आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हां दे टिकाणे घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारयां नूं बुला लिया
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण पर्व जिलकीन अशेच
0: सो जिन्हें महाभारत दे विच्चों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लब आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लब ये भी तिन्ने आए हैं
1: ध्यान सिंह दूरदर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्हां ने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखियां दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: सप्रत श्री प्रभु गिरा उचारे
0: जिन्ने जने आके बैठे सन सियाणे विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन कीता है।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउं लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: वेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: वेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुतले।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, केड़ा मेहनत करे केड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जट्टा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने उह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरन नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो बंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: बंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा के दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने उह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

0: कलयुग पुत्र कलयुग दे विच ओ बंदे नूं तू चंगा मन्नी जेड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओ तो डरी क्योंकि ओ बंदा बड़ा चंगा है जेड़ा सच दी विचार करेगा की खाना ते की नहीं खाना ओ बंदा भी चंगा ओदे कोल ना ज्यादा जाई तंग ना करी ओनू अपनी नारी विच सती बरता होवे ते अखाज दे खाण विच बिरती विच बरागवान होवे ते चित विच सच करके धार लै गल ऐसे पुरुषा नू कदे तंग ना करी
1: सतजुग मेरे सिर बसो पुजा बसो तित्रे
0: कहने सतजुग ता मेरे सिर ते बसदा है कहन लग्या ब्रह्मा बाहां विच मेरे त्रेता बसदा है
1: द्वापर बसियो जंग मम तू चरणन को से
0: जेड़ा द्वापर है जुग ब्रह्मा कहंदा ए मेरी जंगा विच बसदा है अते जेड़ा कलयुग है ए मेरे पैरां विच बसदा है
1: अंग अंग की मुक्त ए वेद मांझ लिख देन
0: कहने इस तरीके दे नाल जेड़ा ना वेद विच ए गल लिख दिती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है तो कलयुग विच किवें मुक्ति होनी है सतयुग विच किवें होनी है त्रेते विच किवें द्वापर विच किवें सारियां युगां दा आपो अपना धर्म है सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों देणे कल केवल नाम आधार कलयुग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओहो पिछे कही गल सच्ची है ओ गल भली है सारी दा संभाला तुहानू करा दिता है पा अथवा तुसां समूला कर लिया याद कर लिया मैं तुहानू दस दिता कि मेरे समय विच की वरतारा वरतेगा
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक एक कल्प जेड़ा हुंदा है एक कलम जैसा हुंदा कि दसक युग जदों लंघ जांदे ने इस तरीके नाल अपनी करमी करके करमी आपो अपनी करके फिर मेरे कोलां सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने ये वाक ब्रह्म सेनता विच कहे हुए इन्होंने लए ने कि जप जेड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल चार वेद ये सारियां चीजां जेड़ियां ने ये सुनाईयां कलयुग ने आके महाराज नूं
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहंदे अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने परा बाणी पसंती बाणी ए सारियां बाणियां दे जाप
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप
0: फिर जेड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है फिर इसे प्रकार बैखरी बाणी बैखरी मुंह नाल बोल के जेड़ा जाप हुंदा मदमा कंठ विच हुंदा पसंती फिर हिरदे च परा बाणी नाभी च ते इसे प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट
0: तो नारायण देव जेड़ा है ए परा बाणी दा है मालक ते जेड़ा नर है ए पसियंती दा इष्ट भाव जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहंदे ने तो इस तरीके नाल कहंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा ए नर आप है नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन
1: स्वास ठहरावै नाब कर उठे तरंगी तोज
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाब दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूंह नाल वाहेगुरु करो ए बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूंह नाल वाहेगुरु करो ए बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने आप ही फिर हिरदे विच चलिया जांदा फिर धुनी विच जाप चलिया जांदा फिर रोमां विच जाप चलिया जांदा ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੜਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ।

0: रस आहार अच नहीं।
1: नाना प्रकार दे भोजन छाके
0: उन प्रियंक पर करो आराम।
1: फिर सुंदर सोने पलंग दे उते विश्राम कीता।
0: इम संवाद कवियन अब्रह्म।
1: इस तरह बड़ा सुंदर संवाद कवियां दा होया है।
0: देश विदेशन मैं कवि गुनी आवे चले सो कीरत सुनी।
1: देशां विदेशां दे विच गुनी कवि जड़े ने जिन्हां विच गुण बहुत है पर कदर नहीं है किते। जदों पता लगता है कि कलगीधर महाराज कवियां दी बहुत कदर करदे ने तां ओह सारे एकत्र हो के महाराज जी दे पास आउंदे हन।
0: दर्प करोड़ों लग बख्शंते।
1: करोड़ां रुपईयां तक थोड़े बहुत रुपईये नहीं दिंदे कवियां नूं। 50,000 तो घट तां दित्ता ही नहीं किसे नूं। 1,00,000, 2,00,000 बहुत कुछ दिंदे ने। क्यों ये भी थोड़ा करोड़ भी उन्हां वास्ते क्योंकि तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। चाहुण तां धरती सारी दा राज दे देण सो चाहुण तां स्वर्गां दा राज दे देण महाराज लई कोई वड्डी गल नहीं है।
0: युग लोगन के सुखन लभंते।
1: जिहड़े जीव चाहुंदे ने कवि लोक भी चाहुंदे ने सानू दोनों लोकां दा सुख मिले।
0: अमृत राए कवि इक आयो।
1: हुण ये चाहुंदे जो भी ने मिलदा है इत्थे। इन्हां विच हुण पहला कवि है अमृत राए। ये सतगुरु महाराज दे पास आया
0: कर कीरत को कवित अलायो।
1: इसने आके जदों महाराज दे दर नूं तकिया दरबार देखिया सारी संगत दर्शन कीते गुरां दी महिमा जानी तां इह कवि ने इक कविता रची है।
0: मिलियो प्रथम कीन परणाम।
1: पहलां आके महाराज दसवें पातशाह नूं मत्था टेकिया है।
0: बौर सुनाए सुजासे अब्रह्म।
1: फिर बड़ा अब्रह्म हुंदा सुंदर सोहना जस कीता है।
0: कबित ज्याही ओर जाऊं अत आदर तां ते पाऊं।
1: हुण कबित कवि जी ने रचिया अमृत राय ने 52 कवियां विचों। जिथे भी जांदा हां हे सच्चे पातशाह